0: खलनाखाजक्तमुन उनिंगजाखाजुप्पनम्मा तैनुवितावनिमियु तब्बैनावलखाजुवत्ता हमारग्ग उनिक्काक्कुमा तमन्नावल इच्छाक्तपारगुलाक्को अमागुलुवाक्कुमा जातायमा इलाकागु अकागु डाक्समलक्तमा नरुनंगित्तोलाइच्चुमनी ताक्तकैनामा नुक्करावु उनिक्कानारम्मगमा सोगजिमन्नी ताबनी नुवत्तिनु डाक्समलगत्ता किम्मेकुमिंगा डाक्रदतायमा अरे इच्छा इन्ना लक्तमा तेमंगा लक्ता पुरुवक पुरुवक कनेमा लक्तमा लक्तिल्लुमा ताबने अकाव मुम्मन किम्मा कुम्मी लक्ता तब्बावा इकुलोंगी गर्ता तुक नुन्नामुन आवजावरोंगा इनुक्षी अक्वारोरी मुम्मी गर्ता इनु योगिंगी तारो योके तोंगारो उजा मक्को तकुजारो उजा किंगे मक्कुलियारो केनेंगी तोंगारो करियारो गर्ती मक्कोरो इन्होंने तकड़ो नहीं हुआ मिशन नहीं उम्मीदियारों में तो कड़ो अक्षय मंगा मत होंगे जो कुछ लाये हो कि सुनाओ बैठने के इन्हों वाले बांग
1: तमाम उम्मीद हम बोलते हैं
0: तमाम उम्मीदियारों में मती
1: सिमली
0: उम्मीदियार तो कहेंगे ना मैं उम्मीदियार कहेंगे ना मेरी था अच्छा खराब तो था ना अच्छा तो ना इली उम्मीद ना हो गया ना कर लिया देखो तुम अच्छे रहे जो लक्ष्य मार के सुना हो बिनो करो तमाम आपके में निकलो किम्मे को तुम चाहने तावंगा उठी तो नंगे जो तावन में में निकलो में तेरे मा आज आपको करी जा रहा होगा ठीक होता है को अन्ना करी मरा वो लोग तेरे को अदारी में गत्ता खजक दी जी मतलब रहा कुका निंगा वालों टप्पाओंगा अम्मा लोग सोचे होते में नमो रह गये अतातंगा हक्के आपे अतारे जो वाटा खाया को देख को उसी जो वाटे जो वन सो कुछ वाटे करो उलाइ के अम्मरो खड़ांग लिस्सा का मेले में तो हक तो अम नक्शे होंगे तेरे वा उसी जो वाटे जो वाटा खाया को यक्ता वाटा तो देख को बने आने को पियो बने मिकिलो आ गम उस यक्ता उन्ना इन्ने मा अतारे में चल यक्ता जाना खाया को तेरे को डप्पा ना खाया तो पुन खासी क्या खासो कारण मतलब पिन्ना नमी में तेरे अबांग इति बयाने में जोकता सुगा मी अदारा में खासी क्या पे युवांग नमो जांग
1: तेरे तीन ना करो
0: नूनो कितनी लोग नहीं चों तावत सोमा अजिंग वह तो सारे को डाला हुआ नहीं ऐसो क्या मटीलिंग देखो ना खासा तो तुअरे वही मता तेरे में आगरो मत इलाज तमको तेरी कले अटवाक में की तब्बा taina tangino kago yung matabo ng edit jago nakto kama na kapto aram matay tibia tabo na majok bawa to kasi yan tungo si bigi jago nila kasi mabaka ilang so na binyo ko lang ni kadi siya wata dahil mata kasi malakata pito kasi malakata ay bi upto aram rin yung mata nyo nami ay araw lilusuli
1: Tapi saya ni ni baru.
0: Tapi umi lagi kata. Tapi mak kuki utam itu mut. Kekul dia lalu ni kunika itu lagi tamma ama. Tapi mak dah bani lagi kata lah. Tapi mak pekoi ni waktu kita lakukan itu yukun. Kepada pekoi lo kuki utam mama itu mahu tipingasut. Aibah baru ni mata nona mituk garia lalu dik. Tangan yo bina kalau pita rasi, amaru kerja api, amaru ini usuk tu di lego hatang orang cera, nung cipta tak ikut ayam hoki utang orang mai temu nama tu bina alam ni uki umur tu kot cila aksi mayo. Tak ikut saya ni bina alam itu tak ikut guna pun tukar api bina ni, tak kuat power.
1: Anu li tukar.
0: Tukar ni atau ima kapur ni nama tu ayo ayam ni, nama itu ayam ni. Tapi mana tukar ni atau ayam ada.
1: Tapi tema tu mari kita lakukan apa nak itu?
0: Aih,
1: aih biar tu mari kita lakukan.
0: Alu, nak ni dia betul tak kerja macam tu nak kena tema. Kapua ngah ipulim. Tukar siapa yang like tu, sana siapa bayang million. Tukar icang itu, ayok sak tu, sebab ni ipulim ada logo ke yummy tukar dah payu. Ayok sang itu, sebab kerja kita ada logo teman nak sejarah logo, sebab kita asal logo. ibu sima tutu kita.